येन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धित्मना वा प्रसते स्वभावा यद्यत् करोमि सकलं परिष्मि नारायणा येन समर्पया श्रीरा लक्ष्मी रमण गोविंदा गोविंदम् आंजनेय वरद गोविंदा गोविंदम् हर नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो राजा रामचंद्र महाराज की जय महारुद्र हनुमान।